श्री श्री देव पुरी समादेव धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन ओम शांति शांति

देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की अलकपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान दीप नारायण भगवान सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति।

0: ॐ सोऽहं सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ॐ सोऽहं सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ॐ श्री अलकपुर जी महादेवाय की जय हो। अलकपुर जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरीशा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महाशयानंद स्वामी गुरुदेव की जय।
0: Hey, where the air is going? Air is going from this side. Sure. Thank you. You can put it near Mahaprabhuji here, maybe. You're here.
2: Yeah.
0: Oh, Mahaprabhuji, that's for you, very good. Okay? Yeah.

तद्दशकृतां संभवामि युगे युगे। इस पर महाभारत गीता स्लोगन। सो यदा यदा ही टाइम टू टाइम द गॉड अपीयर ऑन दिस अर्थ द डिस्ट्रॉइंग द नेगेटिव एक्टिविटीज नेगेटिव थॉट्स एंड द डेवल्स मेंटेलिटी एंड गॉड इस्टैब्लिश दैट अ गुड हार्मोनी एंड पीस ऑन दिस अर्थ। परित्राणाय साधु।

0: जाने की
1: जय।
0: देवादि देव देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
0: दीप नारायण भगवान की अलखपुरी जी महादेव
1: की जय।
0: सत्य सनातन धर्म
1: की जय।
0: सत्संग, सत मीन्स द ट्रूथ एंड संग विद द भक्तास। Those who come for satsang, it means who is the truth person, who is searching for the personality of the truth.

0: देवेश्वर
1: महादेव की जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
0: अलखपुरी जी महादेव
1: की जय।
0: सत्य सनातन
1: धर्म की जय।
0: ओम
2: विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

0: सुनो
1: सुना जी।
0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय,
1: जय
0: श्री सतगुरुदेव की जय।

श्री दीप नारायण भगवान की देवादिदेव देवपुरी श्या महादेव की सदगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की अलखपुरी जी महादेव की सत्य सनातन धर्म की जय।

होली श्री दीप नरयाम भगवान की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। विश्व गुरु श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री श्री देवेश्वर महादेव की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर योगिराज परमहंस श्री स्वामी माहेश्वर

0: ने की जय। श्री श्रीदेव पुरी जी महादेव की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर योगिराज परमहंस श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। ओम श्री अलक पुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की जय। सत सनातन धर्म की जय।
1: Harsha Devi singing bhajan.
2: Teraz bude spievať bhajan Harsha Devi.
1: Prosím.
2: Nech sa páči.
3: Om Sri Alak Puri Ji Mahadeva Ki Jai. Sri Sri Deveshwar Mahadeva
1: Ki Jai.
3: Sri Deep Narayan Bhagwan Ki Jai. Sri Madhavananda Holy Guru Ji Sri Sata Guru Deva
1: Ki Jai.
3: Vishwa Guru Ji Paramahansa Maheshwarananda Yogi Raj
4: Ki Jai.